0: कागज के में छी वा
1: झिल्काई
0: कई पर्सनल नम्बर ब्लक लैबी
1: पर्सनल मोबाइल नम्बर मे उनी यो टेलिकमर बाई अफिसर आएर ब्लक लैर खलखाई
0: अनि बैंगरी
1: बैंगरी
0: सर
1: चाहिँ तले लगपर्दी
0: समलपति न आफै न मोबाइल नम्बर फेरिया बदेर ब्लक तयाई विषय आफै न ब्याङ्क दे पनि जानकारी पिन पर्यम दे आफै न ब्याङ्क खातै न जानकारी अरू न योरी थोनी प्रज्ञा सचेत तल पर्यम
1: सतर्क तन ठगी तब्द क्या जोगिना
2: सिद्धार्थ ब्याङ्क क्याले जनहितरी जारी सन्देश
3: सिद्धार्थ ब्याङ्क सम्बन्ध सधैँभरिलाई।

0: कागज के में छी वा
1: झिल्काई
0: के पर्सनल नम्बर ब्लक लै बधी
1: पर्सनल मोबाइल नम्बर मे उनी यो टेलिकमर बे अफिसर आएर ब्लक लै र खलखाई
0: अनि बैंगरी
1: बैंगरी सर चाहिँ तले लल्पर्दी
0: सम लल्पर्दी न आफै न मोबाइल नम्बर फेर दिया बधेर ब्लक तयाई विषय आफै न ब्याङ्क दे पनि जानकारी पिन परिम दे आफै न ब्याङ्क खातै न जानकारी अरू न योरी थोनी प्रज्ञा सचेत तल परिम
1: सतर्क तना ठगी तब्द क्या जोगी ना
2: सिद्धार्थ ब्याङ्क र क्याले जनहितरी जारी सन्देश
3: सिद्धार्थ ब्याङ्क सम्बन्ध सधैँ भरिलाई

0: समीक्ष हो चौदह के में बोधे लोटी पढ़ी रो बैंक ने विवरण पी भी है मुई खाता लिखे हमरो
1: खाई खाई बहु कोई लोटर भर दिल
2: आई समीज लोटरी पढ़ती हूँ छापता ही गुरी
1: बढ़ती आ बढ़ती बल लोटरी खाली पढ़ती बा सही मैसेज व्हाट्सएप फेसबुक वाइबर खन बनी खाई बिस्ता खाई मई विश्वास आनंद होने खाले पनी आप विवरण खाई मई आपिन खबर बनी वित्तीय संस्था के पासवर्ड पिन खाई मई आरी सुमी बैंक आप बनी आरी
2: सिद्धार्थ बैंक क्यारे जन हेदरी जारी संदेश
3: सिद्धार्थ बैंक संबंध सदैव भरी लाई।